0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
0: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: नासिक नगमे आपके

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: Mum, I'm outside.
10: Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
14: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न रुके, आपके अपने लाइका गोल्ड पर

विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथिना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खा हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवा।

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए।

मन कोय। मन शुद्ध होवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की शुद्ध। मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पथ स्यों प्रगट जाए। मन मग ना चले पंथ, मन धर्म से ती

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए, जाए।

0: इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन द वॉइस दैट टचेस एवरी सोल। Star Express presents Hariharan's Soul India
1: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
5: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीएस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
4: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
9: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: fresh breads and refreshing drinks.
1: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
0: Friends, family ya special night out, make it memorable.
1: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
0: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
1: Book your table today.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
3: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: Greater London. This is Kajal on Breakfast.

0: बस आओ तो चैन आ जाए. व्हाट अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब फ्रॉम द मूवी प्रिंस. एंड ऑफ कोर्स शमी कपूर इज आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक. कमाल दा बंदा. यू नो आई वाज एक्चुअली डांसिंग टू दिस सॉन्ग एंड डोनी इज एक्चुअली ऑन द अदर साइड एट लाइका रेडियो एंड ही इज गिविंग मी दैट लुक. ये बंदा पागल हो गया. बट इज सच अ पेपी नंबर ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग. है ना परफेक्ट वाला गाना.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भी कभी इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा, वन ऑफ माय फेवरेट जोड़ीज, नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर. व्हाट अ लवली रोमांटिक पेयर.
1: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट ट्रेवल हब world.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
1: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: International Siddhashram Shakti Center ki prastuti Purushottam Mass mein aaiye aur divya aashirvad paiye. 17 Mai se 15 June pratidin dopahar 12 baje se 2 baje tak Shri Mad Bhagwat Parayan aur Shaligram Puja Bhagwan Vishnu ke hazar namon ke sath. Sath hi har shanivar Shri Raj Rajeshwar Guruji ke sath Sundar Kand Path aur Hanuman Chalisa Healing dopahar 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208-426-0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
11: मॉम ऑलवेज सेड बेटा क्लोव एंड नीम कीप द माउथ हेल्थी. नाउ दैट सेम ट्रस्टेड विजडम कम्स फ्रॉम बैद्यनाथ. ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी इन सिद्धायु टूथपेस्ट. फ्रेश ब्रेथ, स्ट्रांग गम्स, प्योर हर्बल केयर अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द यूके. सिद्धायु Ayurveda that fits your life.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आई लव शमी कपूर इन दिस सॉन्ग. ही वाज सो सो सो कूल. क्या अंदाज था, क्या डांस था. आई थिंक विद हेलन जी ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. एक्चुअली सुकू सुकू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉज हेलन जी इज नेम इन दिस, यू नो, जब वो एंड हेंस द सॉन्ग आई आई या करूँ मैं क्या सुकू सुकू. What a lovely track, Rafi Saab ki awaaz mein.
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Laika Gold.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: the super romantic track from the movie Kurbani in the vocals of Manar Udas, Kanchan and Anand Halve. Kya pyara wala gana hai. Feroz Khan, Vinod Khanna and Zeenat Aman. Lovely movie.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Now make the summer memorable with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that include flights, hotels and at-all protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or call on 0208-574-8410.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Like a gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Two businesses.
7: Same town.
6: Same service.
7: One appears on page one of Google.
6: The other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
14: Be part of a historic grand opening
15: Experience the newly inaugurated BAP S. Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Bole, tune kya kar raha hai re?
17: Are guru, aapke show ki ticket dhoond raha hoon.
16: Ye to batao, koi pata chala? गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
17: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
18: शीघ्र शीघ्र।
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
19: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
20: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
19: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
20: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
19: Tickets available now at venue box office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
21: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 PM with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo, only Leica Gold.
22: Leica Radio Network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। सबसे पहले मैं क्षमा याचना, समाचार भी और कार्यक्रम भी थोड़ा देर से मैं शुरू कर रहा हूँ, या शुरू तो हो चुका है। आप गीत संगीत सुनते रहे, वीर का धन्यवाद लुक आफ्टर करने के लिए। कभी कभी रास्ते में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आइए देखें आज की खबरें क्या कह रही हैं। एयर फ्रांस और एयरबस को 2009 में हुए एक हवाई हादसे में गैर इरादतन हत्या का कसूरवार पाया गया है। इस हादसे में 228 लोगों की मौत हुई थी। पेरिस की अदालत ने एयरलाइन और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी को इस हादसे के लिए अकेले और पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रही फ्लाइट F447 अटलांटिक महासागर में गिर गई थी। तूफान के दौरान हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ गया था और वह समुद्र में जा गिरा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। विमान में 12 क्रू मेंबर्स और 216 मुसाफिर सवार थे। इसे फ्रांस के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। अप्रैल 2023 में एक अदालत ने दोनों कंपनियों को इल्जामों से बरी कर दिया था, लेकिन 8 हफ्ते चली सुनवाई के बाद कल गुरुवार को उन्हें कसूरवार ठहराया गया, गिल्टी पाए गए। दोनों कंपनियां लगातार आरोपों से इनकार करती रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। भारत से आने वाली खबरों में धारा भोजशाह, धारा भोजशाला हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज जुमे के रोज वहां कैसा माहौल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की ओर से 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने के फैसले के बाद आज पहले जुमे, उसके बाद फैसले के बाद यानी आज शुक्रवार के दिन भोजशाला में लगभग 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में सुबह से ही सिक्योरिटी इंतजाम कड़े कर दिए गए थे और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भोजशाला कैंपस में विशेष मूर्ति स्थापित की गई है। इसके दर्शन और पूजन के लिए सुबह से लोग वहां पहुंचने लगे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के नेताओं ने हाई कोर्ट के आदेश पर दुख जताया है और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका डालने वाले कुलदीप तिवारी ने बताया कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें ये जीत मिली है, हमें हमारी जगह वापस मिली है। हम लोग बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पिछले दो दिनों में दूसरी बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मुलाकात चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, समझौते और विवाद को, झगड़े को सुलझाने के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैठक चल रही है। पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बुधवार को वहां पहुंचकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है, सीनियर अफसरान से मुलाकात की है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके अगले हफ्ते नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के न्योते पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मंत्री मार्को रूबियो 26 मई 2026 को होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कल कहा कि अगले हफ्ते वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा पर जो है आने की बात पक्की है। उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 मई 2025 की शाम 5:30 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान करने वाले पहले व्यक्ति थे। कल उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आ रही हैं। ये भारत और वेनेजुएला की ओर से इस खबर का कोई संकेत या पुष्टि होने से भी पहले हुआ। ये कैसे हो रहा है? अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक और स्टेटमेंट आई है। उन्होंने क्यूबा को अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समझौते की संभावना ज्यादा नहीं है। एक बार फिर भारत की ओर रुख करते हैं। वहां से आने वाली खबरों में दिल्ली सरकार की विकास मिनिस्ट्री ने बकरीद को लेकर के गाइडलाइंस जारी की हैं और ये जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य जिन पर पाबंदी लगी है जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल की नई सरकार ने भी गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, गाय की कुर्बानी देने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए कल कैबिनेट बैठक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक उपयोगी रही, हमने ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और डेवलप्ड इंडिया को साझा के सपने को साकार करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने संबंधी विचारों पर चर्चा की है। और ये पहली बार है जब धोनी ने, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सीएसके की ओर से आईपीएल के एक सीजन में एक भी लीग मैच नहीं खेला है, टीम के वो हिस्से हैं। कल गुरुवार को सीएसके ने इस सीजन का आखिरी लीग मैच खेला। ये मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था जिसे शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने 89 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। मैच के बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से अगले सीजन में धोनी के लिए भाई खेलने से संबंधी सवाल पूछा गया। पर उन्होंने कहा कि जब आपको अगले साल ही पता चलेगा कि जब वही आईपीएल होगा, मुझे भी अगले साल ही पता चलेगा। उनकी कमी हमें निश्चित तौर पर, ये ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा जो कैप्टन हैं सीएसके के, कहने लगे उनकी कमी हमें डेफिनेटली महसूस हुई है। और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12802 ने कल शाम इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इस हवाई जहाज में 160 यात्री सवार थे। अलर्ट जारी हुआ लेकिन एयर इंडिया ने इस घटना पर बयान यानी स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में हवाई जहाज की अंतिम लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान कॉकपिट क्रू को एक इंजन में आग लगने का संकेत मिला था और बाद में ये संकेत सही भी पाए गए लेकिन क्रू ने ठीक बड़े सुरक्षित तरीके से हवाई जहाज को लैंडिंग कराई। सभी यात्री भी सुरक्षित रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं। आइए लौट आते हैं हम संगीत की ओर. Like a radio network, my name is Ravi Sharma and I'm with you till 1 o'clock this afternoon.
0: निशाने पे जान कदमों में.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And these are the LemFi rates. By 1 pound ke badle they are giving 128.56 Indian rupees. Pakistani rupee wo de rahe hain 1 pound ke badle 374.02, Sri Lankan 456.45, Bangladeshi Taki 164.95 aur Afghani 84.49.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: और लीजिए गोल्ड रेट सुन लीजिए भाई. द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 108.51 पाउंड्स पर ग्राम.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और साहब कल के मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सबसे बड़े क्रिकेट मैदान में ये मैच हुआ और गुजरात टाइटंस ने 89 रनों के बड़े अंतराल से मैच जीत लिया. सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स भाई अपना वो पहले वाला स्वरूप इस टूर्नामेंट में नहीं दिखा पाई है और चर्चा है भाई कि उसकी पुराने कप्तान धोनी की कमी बहुत खल रही थी इन खेलों में. आज के मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी. मैच दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा. स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Price

0: lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: Step into the new grand showroom of Gardjules Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gardjules Couture, now open 7 days a week.
1: Gardjules Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our રેડિયો
4: 105 સુપર હિટ શોઝ પછી હવે લંડનમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી જયઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યની ફૂલ ગેરંટી ફ્રાઈડે 26 જૂન 27 પાટીદાર સમાજ વેમ્બલી પાર્કમાં રાતના 8 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે વિઝિટ કરો eventbrite.co.uk કોલ કરો વિડિયોરામા અથવા કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 સખણા રેજો
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
8: मनोरंजन विद रवि शर्मा
9: और बहन भाइयों, अगला गीत हमें 11 बजे की खबरों तक ले जाएगा और खबरों के उस पर रवि शर्मा आपको चिंतन सुनवाएगा। लेकिन भाई बात यह है कि आज थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा इंतज़ार करना पड़ा और वीर ने मेरी जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से निभाई, भी उनका शुक्रिया मैंने अदा किया। लेकिन चक्कर क्या होता है शर्मा जी, हर थोड़े दिन बाद ये आप भाई क्या करें साहब, जवाब शायरी में दें, कब तलक हौसला करें कोई, आज वो फैसला करे कोई। ऐसे मिलने से तो ये बेहतर है कि शोक से ना मिला करे कोई, घर ही रहो, कोई पाए मुराद बिन मांगे और बस दुआ और दुआ करे कोई, मेरा शिकवा मेरी मोहब्बत है, गैर से क्यों गिला करे कोई। मेरे भाइयों यकीन मानिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं बियॉन्ड आर कंट्रोल। अब देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, हाँ पहले कार से सफ़र करता हूँ, फिर मैंने पार्किंग अरेंज कर रखी है, वह गाड़ी पार्क करता हूँ और वो जो गाड़ी जिसकी बहुत बढ़िया लाइन है लेकिन बड़ी बुरी सर्विसेज हैं जिसकी, क्या कहूँ मैं, एलिजाबेथ लाइन, हाँ भाई उससे सफ़र करता हूँ और वो कभी लिफ्ट ख़राब, कभी एस्केलेटर ख़राब, कभी सिग्नल ख़राब, कभी इंजीनियरिंग वर्क और कभी ट्रेन ही ख़राब, कुछ भी हो ट्रेन भाई लेट होती है और इतनी लेट होती है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अब क्या करें साहब, सुबह 4 बजे उठकर भी अगर बंदा समय पर अपने लोगों के बीच ना पहुँचे तो क्या कहें। मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, देर में जानबूझ के नहीं करता, देर हो जाती है, क्या करें।

स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर मनोरंजन प्रोग्राम में। मेरा नाम है रवि शर्मा, आपका प्रेजेंटर दोपहर बाद एक बजे तक। और बहन भाइयों, इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो चुके हैं, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं थॉट फॉर द डे, यानी आज का विचार। और आज के विचार में हम विचार शामिल कर रहे हैं शिवपुरी त्रिपाठी जी का, साउथ हॉल से भिजवाया है। पंडित शिवपुरी त्रिपाठी कहते हैं कि रवि जी, आप हमेशा महापुरुषों के जन्मदिन की चर्चा करते हैं, आज एक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले और मॉडर्न इंडिया के जनक भी कहे जाते हैं वो, आज उनका जन्म हुआ था। यस, आज 22 मई है और 22 मई 1772 में, 1772 में बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। और बहनों भाइयों, राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली हुई कई कुरीतियों के विरुद्ध, कई गलत ट्रेडिशंस के खिलाफ आवाज उठाई। भाई किसी समय वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन सनातन में, भारतीय समाज में ये अच्छी बात है कि जब जिस प्रथा की जरूरत ना हो वो उसे बदल डालते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं। किस समय कब वो प्रथा शुरू हुई, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन समय बदला है तो हमें भी बदलना चाहिए। चर्चा करते हैं आज के विचार का, शिवपुरी त्रिपाठी जी का विचार, आज का चिंतन।

राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति के साथ सती हो जाती थी। कितनी तकलीफ दे मौत होती होगी वो। उन्होंने इस ट्रेडिशन को खत्म कराने के लिए लगातार कैंपेन चलाया और उन्हीं की कोशिशों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। वैसे भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है यह प्रथा। राजा राममोहन राय ने और भी कई काम किए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने बहुत काम किया और पत्रकारिता, जर्नलिज्म भी उन्होंने शुरू किया। एक अखबार निकालने लगे थे उस समय में, देखिए। लेकिन बहनों भाइयों, बात सती प्रथा की करना चाहता हूं कि कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। भारत जैसे जागरूक समाज में ऐसी ट्रेडिशन, देखिए साहब, विधर्मियों के हाथों पड़ने से पहले अपनी इज्जत को, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने आत्मदाह करने के लिए जो कदम उठाया वो सतीत्व कहलाया। पर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, आपको बताएं। हमारे यहां कूद पड़ी थी पद्मिनी, अंगारों पे आता है एक आलेख, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनी अंगारों पे, यह अपना राजपुताना नाच जी से तलवारों पे। यानी विधर्मियों के हाथों पड़ने से पहले अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं जान तक दांव पर लगा देती थीं, जब उनके पति युद्ध में शहीद हो गए और सुरक्षा दिखाई न दी तो महिलाओं ने यह कदम उठाया। पर आज सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी को देखते हुए महिलाओं को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। महिलाओं के लिए उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, कोई भी आगे आएगा और विश्वास दिलाएगा कि आप सुरक्षित हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। एक ट्रेडिशन आपको बताएं, रावण के बेटे मेघनाथ की पत्नी के बाद उनकी पत्नी, मेघनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना सती हो गई। पर रावण के यहां, क्योंकि वो राक्षसों से घिरी थी, उसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए असमर्थ शायद समझा होगा, इसलिए वो मेघनाथ के साथ सती हो गई। लेकिन उसी समय, उसी दौर में अयोध्या में श्री राम जी की पूजनीय माता श्री कौशल्या, उनके पति दशरथ की मृत्यु के बाद वो सती नहीं हुई, होने की जरूरत भी नहीं थी। सुमित्रा, केकई और भी भाई कई महिलाएं ऐसी थी जिन्हें सती होने की आवश्यकता नहीं थी, भलाई जिनके राम लक्ष्मण जैसे बेटे हों, जिनके यहां अयोध्या जैसे राज्य में धर्म की स्थापना हो। राम राज्य तो कहते ही हैं, सुरक्षा देने के लिए था। अब सोचिए, आजकल मॉडर्न युग में बताते हैं आपको, उत्तर भारत में एक ट्रेडिशन, त्रिपाठी जी कहते हैं हमने देखी, किसी महिला के पति की डेथ हो गई, अंतिम संस्कार के बाद उनके बड़े बेटे ने हवन किया, गृह शुद्धि के लिए सारे काम किए गए, पूजन हुआ, पगड़ी की रस्म अदा की गई। पिता की मृत्यु के बाद बेटे के सर पे जो पगड़ी रखी जाती है वो जिम्मेदारियों का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो परिवार की जिम्मेदारी, विशेषकर मां की जिम्मेदारी उठाता है। मां, पिता सर पर नहीं रहे लेकिन आप हर तरह से सुरक्षित हैं, मैं हूं ना। मां को अब वो कठोर जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। तभी एक और देखी बात देखी भाई, कि वो बेटा इस पगड़ी की रस्म की अदायगी के बाद घर के अंदर से एक सोने का कंगन निकाल के लाता है और मां को पहनाता है। ये ट्रेडिशन है, इसका क्या मतलब है? अरे बेटा मां को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है, सोने का कंगन। मां, कौन कहता है कि
आपको स्वर्ण नहीं पहनना, आभूषण नहीं पहनने हैं, मैं पहनाता हूं, पिता नहीं है पर मैं हूं ना। बेटा पिता की जगह लेता है, पिता का की जिम्मेदारियां सर पे उठाता है, पगड़ी बंधवाता है तो मां को विश्वास दिलाता है, आई एम योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई एम टू सर्व यू मां, तुम्हें सती होने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप को वैधव्य भोगने के लिए मजबूर मत समझो। बेवा विधवा अभिशाप नहीं है, पति नहीं रहा सर पे, बेटे तो है ना। तो देखिए इस तरह से सती प्रथा समाप्त हुई। समाज में बदलाव समय के अनुसार जहां होता है वो समाज प्रगति करता है। मां को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मां जन्म देने वाली है, उसे सती क्यों होना पड़े। उसने आत्मदाह करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। राजा राम मोहन राय ने यह बदलाव किया, हम भी अपने मस्तिष्क में अपने ब्रेन में यह बदलाव करें। सिक्योरिटी ने माँ को, भाइयों को, बहनों को, छोटे परिवार को।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और बहन भाइयों, आज का चिंतन सती प्रथा को लेकर के की। कुछ प्रथाएं किसी कारण किसी समय शुरू हुई, लेकिन समय के साथ बदलाव सूझबूझ का परिचायक होता है। हम लकीर के फकीर नहीं हैं, हम अपनी माताओं का, अपने समाज का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, हर तरह की संभाल सकते हैं। हादसे होते हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना आता है, समय के अनुसार ढलना आता है, समय के साथ चलना आता है। राजा राममोहन राय, जिनका आज जन्मदिन पड़ता है, भाई बंगाल में जन्मे थे, सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। इसके अनुसार और भी समाज सुधार के कार्य किए, धीरे धीरे लोगों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि इतनी सूझबूझ हम में है कि अब वक्त की आवश्यकता ये है। वो किसी मजबूरी में शुरू हुई प्रथा अब समाप्त हो रही है। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें पंडित शिवपुरी त्रिपाठी जी ने भिजवाया, और जो गीत हमने सुनवाया, भाई मातृ प्रेम का, श्रद्धा का परिचय, ये गीत कई बार हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। आज का चिंतन, आज का विचार समेटते हुए बता दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर भारत में अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो मौका है। आज का रेट बता दूं आपको, एक पाउंड जो आपकी पॉकेट में है आज दिला सकता है SBI से 128.35 रुपीस मैक्सिमम। इसके अलावा भाई कुछ और भी जुड़ा है इस संदेश के साथ कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे एंड व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds तभी ये मिलेगी फैसिलिटी। लेकिन इसके अलावा अगर 2000 pounds से ज़्यादा भेजते हैं तो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक दिया जाएगा भाई। Terms and conditions apply, याद रखिएगा।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: या तो फिर उसके बाद,
1: उसके बाद
0: एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन,
2: एक तारा बोले
0: तुन तुन,
3: एक तारा बोले सबकी पोल खोले। भाई मनोज कुमार साहब ने उस समय ये गीत फिल्म में शामिल किया। आज थोड़ी सी फीलिंग्स बदल गई हैं लोगों की, कैसे नेता चाहिए वो अब थोड़ा डिफरेंट भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन भाई गीत सुनवाया हमने आपको महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, एंड देट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म यादगार। अगला गीत सुनवाने से पहले एक संदेश है हमारे पास, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, ए स्पेशल म्यूजिकल फीचर, जो एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट, एक संगीत संध्या फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड 515 बैंड। भाई ये जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है 19 जून को, कहाँ? द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल में, ये एसएक्स में है, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका गोल्ड।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: किशोर कुमार साहब के बहुत सारे दीवाने हैं, आपको याद है भाई एक समय किशोर कुमार के गीतों पर रेडियो पर बजाने के लिए पाबंदी लग गई थी। बड़े मूडी थे किशोरदास, संजय गांधी जो उस समय भाई इंदिरा गांधी के सुपुत्र बड़े पावरफुल लीडर थे, और उन्होंने किसी कार्यक्रम के लिए इनकी आवाज़ मांगी थी, कहा था कि आके गाओ, और इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं गाएंगे, फ्री में तो नहीं गाएंगे, भाई मूडी थे ना। तो साहब कुछ समय के लिए रेडियो पर आकाशवाणी से इनके गीतों का प्रसारण बंद हो गया, और साहब बाद में कुछ समय बाद जब शुरू हुआ, कहते हैं कि रफ़ी साहब खुद गए दिल्ली, और उन्होंने जा करके इंदिरा जी से रिक्वेस्ट की कि किशोर दा के गीतों से पाबंदी हटाई जाए। ये कहने में आया है भाई, सुनने में आया, बहुत देर तक ये बात रफ़ी साहब ने किसी को नहीं बताई, लेकिन बहुत बाद में पता लगा भाई उनके प्रयास भी शामिल थे किशोर दा को वापस लाने में। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें सुनिए इस गीत में।

0: feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: बहुत सारे संदेश आके स्क्रीन पर चिपक गए हैं भाई। गीत सुनवाते सुनवाते आपको धन्यवाद भी दोहराते चलें। वत्सला जी, राजीव पटेल। वत्सला कहती है कि सनातन की यही तो खूबसूरती है कि वो एडजस्ट करना जानता है, वो बदलना जानता है दुनिया को भी और स्वयं को भी। नैना शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अर्जुन जी, हिना जी, थैंक यू।

0: याद।
1: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स प्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
0: जेमिन्स प्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Goon aur online suno likeagoon.com pe. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: गीत सुनवाने से पहले भाई याद दिला दूं आपको कि आज है 22 मई। आज कई लोगों के जन्मदिन पड़ते हैं आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। है किसी का जन्मदिन? बहुत से लोग, फेमस लोग भाई आज जन्मे थे 22 मई को, जिनमें कुछ नाम शामिल हैं। मैंने राम मोहन राय जी का तो जिक्र किया चिंतन में। इसके अलावा देवदास गांधी वॉज बॉर्न टूडे ऑन 22nd of May 1900। और साहब पद्मनाभ सिंह महाराजा जयपुर 1999 में जन्मे थे भाई। अभी भी भले ही वो राज प्रथा समाप्त हो गई है लेकिन राज परिवार तो है ना, राजवंश तो है ना। 22 मई 1999 में जयपुर के महाराजा नौजवान पद्मनाभ सिंह का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन जन्मे थे कौन, जन्मी थी महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज ही के दिन जन्मे थे उत्कर्ष शर्मा। ये कौन है भाई, उत्कर्ष शर्मा को नहीं जानते? अच्छा बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो, ग्रेट गामा भी आज ही के दिन जन्मे थे। मेरी जानकारी के अनुसार अमृतसर के किसी गांव में, भारत में उनका जन्म हुआ था लेकिन पार्टीशन के समय वो पाकिस्तान चले गए थे। बड़ी धूम थी, बड़ा नाम था उनका। मैंने एक बार दारा सिंह जी से पूछा था इंटरव्यू के दौरान रेडियो पर के भाई आपको लोग रुस्तमे जमा कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन, तो मैं कहा रुस्तमे जमा क्या गामा नहीं थे? बोले नहीं, वो पाकिस्तान में ही रह लिए, उसके बाद लंदन में भी उनकी कुश्ती हुई थी लेकिन रुस्तमे जमा यानी पूरे वर्ल्ड के वो चैंपियन नहीं बने थे, ये दारा सिंह जी का कहना था। लेकिन साहब गामा का नाम और काम जो है वो दुनिया में मशहूर था, द ग्रेट गामा। मजे की बात यह कि उनका जन्मदिन आज है, उनकी डेथ भी 22 मई को ही हुई थी ऐसा सुना है। 22 नहीं तो कुछ लोग 23 मई कहते हैं, लेकिन मजे की बात देखिए कि जन्मदिन और बरसी एक ही दिन मनाई जाती है उनकी। 1960 में 82 बरस की आयु में उनकी डेथ हुई थी लाहौर में, और भाई जन्म उनका अमृतसर ज़िले के किसी गांव में भारत में हुआ था। गामा को हमने याद किया, और भाई उत्कर्ष के बारे में मैं कह रहा था, उत्कर्ष एक्टर हैं पर बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं आए वो। आई थिंक सनी देओल के साथ एक फिल्म अभी पिछले दिनों उनकी आई थी पर उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। उत्कर्ष शर्मा हैं गदर बनाने वाले अनिल शर्मा के बेटे। और भाई आपने गदर देखी होगी ना, तो उसमें वो जो बच्चा है तारा का बेटा अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ, अरे भाई वो गीत गुनगुनाते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है अपने पिता के साथ।

उत्कर्ष शर्मा भाई अब तो नौजवान हो चुका है, बड़ा हो गया है, फिल्म में हीरो भी आया, पर उसके बाद अनिल शर्मा ने उसे और किसी फिल्म में नहीं दिखाया। अनिल शर्मा उनके भाई पिताजी, यहाँ लंदन में मुझसे मुलाकात हुई थी, प्रॉमिस किया था रवि जी जब अगली फिल्म बनाऊंगा तो आपको भी शामिल करूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे धरे। तो भाई अनिल शर्मा जी के पिताजी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, फिल्मों में इतनी दखलंदाजी के बावजूद उत्कर्ष शर्मा, बड़े खूबसूरत गोलमटोल से वो नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे, भाई वो आपने देखे होंगे गदर फिल्म में, उनका जन्मदिन। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: ठहर जाओ यहीं पर, केक मंगवाता हूँ, जन्मदिन मनाने वालों के नाम कटवाता हूँ। जो बात यहाँ है, जो ठाठ यहाँ है, और कहीं नहीं है शर्मा जी।
1: Track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates if you want to send money to India, Pakistan, Bangladesh, wherever your friends or family members are. By 1 pound ke badle In Indian currency, they are giving 128.47 rupees. Pakistani currency mein 373.96. For 1 pound in Sri Lankan rupees, they are giving 456.86. Bangladeshi take 164.92. And Afghani 84.55.
1: Like Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 108.57 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: अली जैसा बता दें आपको, कल के मैच का जो फैसला हुआ भाई, वो तो गुजरात टाइटंस के पक्ष में गया। अहमदाबाद में खेला गया था कल का मैच, 89 रनों से उन्होंने गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की और चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। किसी ज़माने में चेन्नई सुपर किंग्स वालों का दबदबा रहता था आईपीएल में, लेकिन भाई अब वैसी टीम नहीं लग रही थी। आज के मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलोर और हैदराबाद के बीच मुकाबला समझिएगा। दोपहर बाद 3 बजे हैदराबाद में जब मैच शुरू होगा, स्कोर के आंकड़े हम यहां से आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
5: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
4: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
4: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
7: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Very good afternoon to you, bhai. SBI UK का इस समय का जो रेट चल रहा है मैं बता देता हूँ, पैसे भिजवाने का मौका है वैसे, मतलब भले ही ये रुपए के लिए अच्छी बात ना हो लेकिन यहाँ रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए अच्छी बात है कि रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस समय आज का रेट बता रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले 128.35 रुपीज़, 128 रुपए और 35 पैसे मैक्सिमम यू कैन गेट ऑन अनदर थिंग भाई, सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून. खास बात क्या है कि यू कुड बी इन टू विन, यू विल बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, और अगर 2000 या उससे ज़्यादा भेजते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक कुड बी वॉन. तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो भाई मौका है, फायदा उठाइए, पैसे भिजवाइए.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: International Siddhashram Shakti Center ki prastuti. Purushottam mass mein aaiye aur divya aashirvad paaiye. 17 mai se 15 June, pratidin dopahar 12 baje se 2 baje tak Shri Mad Bhagwat Parayan aur Shaligram Puja Bhagwan Vishnu ke hazar naamon ke saath. Saath hi har shanivar Shri Raj Rajeshwar Guruji ke saath Sundar Kand paath aur Hanuman Chalisa healing dopahar 3 baje se 7 baje तक. स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
9: हेरोल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208 507 7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldpackaging.com. हेरोल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
14: 25? Seriously?
13: Sounds like Ojo time.
14: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
13: Sorry about the wait. How can I help?
14: You can help me celebrate. I won.
15: Feel the fun. Play Ojo.
16: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
17: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoon.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है शम्मी कपूर. शम्मी कपूर भाई मेरे कार्यक्रम में तो एज एन आर्टिस्ट ऑफ द वीक वो आखिरी बार मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन वीकेंड तक आप उनकी कई फिल्मों के गीत सुन पाएंगे. शम्मी कपूर जन्मे थे आई थिंक 21 अक्टूबर 1931 में, 21 अक्टूबर 1931, और भाई उनका निधन हुआ 14 अगस्त 2011 में. दो शादियां की थी उन्होंने. पहली शादी उनकी गीता बाली से हुई थी 1955 से 1965 तक चली, जब उनकी मृत्यु हो गई 65 में. फिर कुछ समय के बाद उन्होंने नीरा देवी से शादी की 1969 में. शम्मी कपूर पृथ्वीराज जी के सुपुत्र और भाई राज कपूर, शशि कपूर के भाई, और साहब फिल्मी जगत में उन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई. अब आइए उनका एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जो शायद आपने बहुत बार नहीं सुना होगा, और हमें नैना शाह ने सुझाया है ये गीत, और भाई आपके लिए स्पेशली मैं लाया हूँ ये गीत. सुनिए और एंजॉय कीजिए.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सच्चाई फिल्म का गीत शम्मी कपूर पर पिक्चराइज भाई, और बहुत सारे ऐसे यादगार गीत हैं जो अभी वीकेंड तक तो आप सुनेंगे ही शम्मी कपूर की फिल्मों के, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन वैसे भी भाई गाहे बगाहे आप सुनते रहते हैं शम्मी कपूर आर्टिस्ट ऑफ द वीक। आपने सुना उनकी फिल्म का गीत, और नैना थैंक यू वेरी मच।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और सखियों को लाइका रेडियो नेटवर्क पर।

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाइयों भाई अपने कुछ एक भाई ऐसे कार्यक्रमों के विषय में आपको जानकारी पहुंचा दें जिनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे राम ये जो कार्यक्रम हो रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द शो हमारे राम, स्टारिंग बड़े सुप्रसिद्ध भाई संवाद अदायगी के लिए और हिंदी भाषा के लिए आशुतोष राणा इसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं, राहुल बुचर जो हैं वो श्री राम के रोल में होंगे एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंदन एवेंटिम अपोलो जो हैमर स्मिथ में है। तो भाई ये नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। इसके अलावा लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द कन्फर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार शानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल। ये बैंक हॉलीडे मंडे को हो रहा है भाई, 25 मई को बहुत नज़दीक है। मुझे यकीन है कि आपने अपनी टिकटों की व्यवस्था कर ली होगी, पर जानकारी देना हमारा फ़र्ज बनता है, तो बी श्योर टू बी देयर।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
5: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: कल्याण जी आनंद जी के बारे धुन पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ये गीत गा रहे थे। और आनंद जी भाई बताते हैं इस गीत के साथ कुछ रियल सिचुएशंस जुड़ी हुई थी उनकी बेटी रीटा के साथ।
1: तू झूठ कहाँ बोली, तू झूठ नहीं बोली, प्यार को ही पूजा कहते हैं प्यार के परवाने।
0: हीरा फिल्म से लिया था ये गीत, 1973 में आई थी। साउथ ओल्ड ट्रेवल वालों का एक संदेश है भाई जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ओल्ड ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से भाई वो टूरिस्ट के घूमने फिरने वालों के सैलानियों के लिए बड़े भरोसेमंद साबित हुए हैं एंड दे आर विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड एज वेल। विजिट साउथ ओल्ड ट्रेवल और कॉल 0208574 8410।
2: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Whatever you're celebrating, make it a Moonpig. Birthdays, anniversaries, big moments, little ones. Even the ones you nearly forgot. From heartfelt to hilarious, soppy to savage. You'll find the card that hits the mark every time. And it's easy to personalise, to make it properly theirs. Sorted, sent and delivered right on time. Plus, get 20% off with code JOY20. Because everyone deserves a
4: Moonpig.com.
3: Terms and exclusions apply.
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस with unbeatable price
7: at all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: Are we there yet?
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simsy before we left London.
10: Simsy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy. Holiday travel simplified.
13: T's and C's apply.
14: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
15: राम कृष्ण हरी UK तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
16: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
9: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
17: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
20: Feel the fun. Play Ojo.
19: 18 plus, gamble aware.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
21: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
22: One and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: वो दिन याद करो जब इसी समय इसी फ्रीक्वेंसी पर आपने ये गीत बजाया था। शर्मा जी बहुत देर नहीं हुई है, पर कुछ गीत इतने प्यारे होते हैं, कुछ हटकर न्यारे होते हैं, सुनने को बार बार मन करता है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और साहब आपको हम लम्फाई के रेट्स बता देते हैं। एट दिस टाइम टुडे दे आर गिविंग हाउ मच फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.49 इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपए वो दे रहे हैं 373.79, श्रीलंकन रुपए 452.25, बांग्लादेशी टकास 164.99 एंड अफगान अफगानी 84.5।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold, well, the gold is sold at the rate of 108.57 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Tata IPL 2026 में भाई मुकाबले जो हैं अब अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन सी टीमें होंगी प्ले ऑफ में आपको बता दें कि अब नतीजे बड़े स्पष्ट होते जा रहे हैं। कल के मैच में आप सुन चुके हैं कि गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हराया, बड़ा अंतराल था। आज के मैच में क्या होने वाला है, आज भिड़ंत हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। भाई ये मैच जो है हैदराबाद में खेला जाएगा तो होम स्पोर्ट रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। दोपहर बाद 3 बजे ये मैच शुरू होगा। टोटल मैचेस जो है वो 74 खेले जाने हैं और ये 67th मैच आज हो रहा है। स्कोर के आंकड़े हमारे पास रहेंगे, हम आपको पहुंचाते रहेंगे हैदराबाद से, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
4: की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
0: किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा। कौन बुला रहा है?

0: क्या बात है इन गीतों के भाई, ऐसे ऐसे गीत आपको लाइका नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर ही सुनने को मिलते हैं। और देखिए रिस्पांस में बहुत सारे संदेश आते हैं। अविनाश पटेल जी आप जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। जैस्मीन आपका पैगाम आ गया। अरुणा भूपेंद्र पटेल, निर्मला जी, सुनीता शर्मा, राजीव पटेल वत्सला, शेखर जी, हंसा वोरा, रागिनी और भाई महेंद्र बजारिया साहब, विजय, ये सारे वो लोग हैं जो मेरे परिवार के बहुत घनिष्ठ रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई कुछ ऐसे भी हैं जो संदेश नहीं भेजते लेकिन सुनते हैं, खामोश लिसनर, उन सबको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ये तस्वीर किसने भिजवाई है भाई? कोई हैंडसम है जिसकी तस्वीर है ये? कौन है ये? असद भाई आपने भेजी है क्या? कहाँ से मिली ये तस्वीर आपको? बड़ी खूबसूरत है। ये हैंडसम रवि शर्मा लगता है, थैंक यू। और नहीं ये आप कौन है जी? आपने अपना नाम नहीं लिखा। ये तस्वीर आपने भी बहुत अच्छी भिजवाई है भाई। हरीश भाई केम छो तमे? सारू प्रभु नी कृपा। एजाज चैशम में सुन रहे हैं, पम्मी स्लाव में ज्योति और गिरीश शाह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एजाज को और रफ़ी साहब के गीत, रफ़ी साहब के नहीं सभी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं और वो गीत का पूरा पोस्टमार्टम करके बता देते हैं भाई, कब बना, किसने गाया, किसने संगीतबद्ध किया, कौन सी फिल्म से लिया गया, इनकी जानकारी बड़ी पुख्ता है, बता दूँ आपको। और साहब हमारे हरीश रोडा जी, रंजन जी, आपको भी गीत पसंद आ रहे हैं, हेटल भारत और सलमा मेडस्टोन में जुड़ी है हमारे साथ, आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।
1: This is like a gold.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड।

0: की। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
1: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
1: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
10: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX। Once you visit, you come again and again.
11: Be part of a historic grand opening.
1: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
1: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
13: जब से मेरे यार ने ठुकराया है, अपने लिए तो हर कोई पराया है। कभी महफिल की जान होता था, अब तो मैं हूं और मेरा साया है। चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब वीकेंड। बाय बाय।

0: send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Right, भैया SBI UK का काम पहले कर लेती हैं, उसके बाद आपका स्वागत करूंगी मैं, क्योंकि एकदम से जल्दी से जब कोई काम हो जाता है तो गड़बड़ थोड़ी सी हो ही जाती है. राइट, आपको बता दें कि अगर SBI UK के ज़रिए पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे कितने पैसे, कितने रुपए, 128 रुपीज़ एंड 35 पैसास. और यही नहीं, SBI योनो ऐप के ज़रिए या ब्रांच में जाकर अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं बाय एंड ऑफ जून तो यू कैन विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय. जिए और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए. गाने तो सरिता चुन चुन कर लाती है आप ही के लिए. आजकल रोज ही मुलाकात हो रही है आपसे. अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप मेरे साथ होते हैं और आप अपने होने का जब एहसास भी दिलाते हैं तो और भी अच्छा लगता है. यस, जब आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं और बताते हैं कहाँ बैठे सुन रहे हैं प्रोग्राम, हर गीत के बाद इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वाह सरिता कितना अच्छा गाना था, इतने अरसे के बाद सुना, हमारी ये यादें जुड़ी हैं इन गीतों के साथ, तो और भी अच्छा लगता है. तो शुरू हो जाएं अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं भेजा. वैसे स्क्रीन मेरी फुल है, सभी के सभी मेरे जो रेगुलर हैं वो पहुंच चुके हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपने कभी किसी को मैसेज नहीं किया तो आज कीजिए ना. सरिता को बता दें कि कहाँ बैठे कौन से कान मेरी तरफ हैं. और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके कान उधार चाहिए. तो शुरू हो जाए, जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज भेजिए.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
6: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
6: हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
5: Friends, family या special night out, make it memorable.
6: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
5: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
6: Book your table today.
7: राम कृष्ण हरि यूके फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र. दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 डोल 80 ताशा परंपरा संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन. भारत से यूके तक एक ही रिदम एक ही प्राइड. टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org. लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट. यूज कोड लाइका 10. वाद्य महोत्सव 2026. फील द बीट लिव द लेगेसी.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
14: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
15: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
14: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
15: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
16: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
18: 25? Seriously?
17: Sounds like Ojo time.
18: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
17: Sorry about the wait. How can I help?
18: You can help me celebrate. I won.
19: Feel the fun. Play Ojo.
20: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
21: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: राजेश खन्ना थे इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थी इस फिल्म की शर्मिला टैगोर। लेकिन ये वाला गाना जो है किस पे पिक्चराइज हुआ था आपको याद है? याद है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। और एम आई गेटिंग कन्फ्यूज कि ये गाना फरीदा जलाल और राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुआ था या फिर शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पे? अरे भाई बहुत साल हो गया ना फिल्म देखी नहीं है, 1969 की फिल्म थी। एस डी बर्मन साहब का संगीत और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। जो भी मेरे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैसेजेस भेज रहे हैं बड़े प्यार से, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कौन से कान कहाँ बैठे सुन रहे हैं, मुस्कुरा दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ साथ हैं। राइट, और भाई प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में हम याद करने जा रहे हैं वेद राही जी को, जो कि एक ऑथर रहे हैं और उन्होंने बहुत सी फिल्में लिखी, उनकी स्टोरीज लिखी, स्क्रीन प्ले लिखे या फिर उनके डायलॉग्स लिखे, कुछ डायरेक्ट भी की फिल्में, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रोग्राम के इस आवर में क्या चल रहा है क्या आपको पता चले? अगर पता चले तो बता दीजिएगा। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ कि ये गाना जो अभी अभी आपने फिल्म आराधना से सुना, वो गीत आप तक किसने पहुँचाया?
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी की आवाज़ें आपने सुनी। और विजय गुदरोई जी क्या कहते हैं, सरिता जी, आराधना वॉज द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी आई सॉ, होप यू वेल, आई सॉ व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड इन द यूके। ओके राइट, और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन। और आपके लिखते हैं, गुड आफ्टरनून किशोर लाडवा, लिस्निंग टू यू वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू आपका भी। जहीर खान साहब, मेरे सवाल का जवाब किसने नहीं दिया है कि वो गाना किस पे पिक्चराइज हुआ था, फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पर या शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना पे। और जहीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं, विश्वजीत राजू, थैंक यू आपका भी। एंड शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, आपने लिखा है। अरुणा जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पे पिक्चराइज हुआ। ये किसने जवाब दिया, ये कौन है, राजेश अपना नाम लिखा, नौशाद, नौशाद जी आप लिखते हैं। अब मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी, फरीदा जलाल और राजेश खन्ना पर गाना पिक्चराइज हुआ था ऐसा पम्मी जी ने लिखा है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, बाद में ज़रूर शामिल करूँगी।
2: To Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Whatever you're celebrating, make it a moon pig. Birthdays, anniversaries, big moments, little ones. Even the ones you nearly forgot. From heartfelt to hilarious, soppy to savage. You'll find the card that hits the mark every time. And it's easy to personalise to make it properly theirs. Sorted, sent and delivered right on time. Plus, get 20% off with code JOY20. Because everyone deserves a...
4: Moonpig.com.
3: Terms and exclusions apply.
5: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन।
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
16: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun. PlayOjo.
19: 18 plus, gamble aware.
20: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
21: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
22: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
21: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
22: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
21: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
22: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
21: કોલ 020-8900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
22: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
2: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક, પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર, રાગસાન.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: फिल्म का नाम था बेटी बेटे और सुनील दत्त एंड शोभा खोटे महमूद जयंत इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी, याद है आपको? मुझे नहीं याद है, अगर आपको याद है तो मुझे बता सकते हैं, वैसे मैं थोड़ी थोड़ी भुलक्कड़ भी हूँ। एनीवे आई थिंक शोभा खोटे वॉज द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता सकते हैं आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, ये मुझे मालूम है, और गीत बड़ा खूबसूरत था मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले की आवाज़ें। तो इस प्रोग्राम के इस आवर में आपने वही सारे गीत सुने जिनमें ये दो आवाज़ें शामिल रही, और कुछ गीत और भी अभी आने वाले हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.76, Pakistani rupees 373.88, Sri Lankan rupee 454, Bangladeshi taka 165.5, Afghanis 84.49.
2: Like her radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The LIKA Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: और गोल्ड का रेट इस वक्त क्या है जी मार्केट में? लेटेस्ट रेट है 108 pounds and 33 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: एंड महेंद्र बरजारिया जी लिखते हैं साउथ हैरो से, सरिता जी इस फिल्म की हीरोइन थी बी सरोजा देवी। एंड महेंद्र, अच्छा महेंद्र जी आपने लिखा है ये। विजय जी आपने भी मैसेज भेज दिए, विजय घनोवा आप सुन रहे हैं। और विश्वजीत राजू जी क्या लिखते हैं, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर वो गाना पिक्चराइज हुआ था, कोई कहता है फरीदा जलाल पल हुआ था, मुझे फिल्म दोबारा देखनी पड़ेगी। एंड सरिता जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? अरुणा शाह जी हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। फरीदा गुलाम अली जी, पमीज सिंह जी इंसलाव, और आप कौन हैं, आशिमा इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से आपने मैसेज भेजा है, थैंक यू। तोची जी आप भी सुन रही हैं, तोची पन्नेसर, भारती डीडी, हाना, ज्योति, गिरीश शाह, दिनेश पोपट जी आप सब हमारे साथ हैं, हंसा वोरा जी आप भी हैं हमारे साथ, और ये कौन है, अपना नाम ज़रूर लिखा करें, हरीश कत्री जी, थैंक यू। इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिएगा। और अब ज़रा अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले क्रिकेट अपडेट भी देख लें।
3: मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट, कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
0: बड़ी जल्दी थी बाली जी को बोलने की। हाँ चलिए आइए अब क्रिकेट के बारे में जानें।
1: Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भी आज मैच किसके बीच है? सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मैच होने वाला है। 3 बजे मैच यहाँ शुरू होगा, तो फिर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, इसलिए कहीं नहीं जाना, हमारा साथ देते रहना। वैसे भी मैं तो यही कहती हूँ, जो भी काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ कान मुझे उधार दे दीजिए, क्योंकि इन कानों में मैं अच्छे अच्छे गीतों का रस खोलती रहती हूँ। आपको पसंद आते हैं गीत, ये जानकर अच्छा लगता है। हाँ तो बता रही थी मैं आशा जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ शामिल रही प्रोग्राम के इस आवर के गीतों में। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे गीत पसंद आए। अगला गीत मैंने 1965 की फिल्म बेदाग से चुना है, तो सुनने के लिए तैयार रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।

0: जो ज़्यादा सुनने में नहीं आते हैं, लेकिन जब कभी भी हम सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। और बेदाग फिल्म का गीत था, 1965 की ये फिल्म थी, और इस फिल्म में नंदा थी, मनोज कुमार एंड शशिकला। फिल्म को डायरेक्ट किया था आर भट्टाचार्य ने। और भई अब एक गीत और इस आवर में मैं शामिल कर पाऊँगी, और गीत ज़रूर आप पसंद करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है। वैसे तो सारे गाने बहुत अच्छे होते हैं सरिता के प्रोग्राम में, या अपने मुँह मियाँ मिठू, क्योंकि मुझे संगीत से प्रेम है तो मेरे चुने हुए गीत भी आपको पसंद आते हैं, ये जानकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और अगला गीत है फिल्म भरोसा से। कौन सा गीत आपके जहन में आ रहा है जिसे आशा भोसले एंड रफ़ी साहब ने गाया और सरिता शामिल करने वाली है? सोचते रहिए।
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
3: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
4: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
3: So where do we find something like that now?
4: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
5: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,

0: plus beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।
6: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
7: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold. Leica Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold.

0: The commemorations are being held at the National Memorial Arboretum in Staffordshire. 179 British troops were killed during the eight-year conflict between 2003 and 2011. The Help for Heroes charity says many veterans are still living with mental and physical scars. Elsewhere, TV presenter Judith Chalmers has died at the age of 90. She was best known for hosting the travel show Wish You Were Here. And today is the hottest day of the year so far. Heat health alerts have been upgraded to amber across large parts of England, with forecasters predicting temperatures of 34 degrees over the bank holiday weekend. From Sky News, I'm Imani Rana.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: भी आज तो हम कहेंगे लवली लवली मौसम है, सनी एंड जेंटल ब्रीज चल रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस एंड लो विल बी 16. जैसा कि न्यूज में भी आपने सुना कि आज सो फार इज द हॉटेस्ट डे. एंड लेस्टर में कैसा है मौसम? सनी एंड मॉडरेट ब्रीज, 25 डिग्री मैक्स एंड लो विल बी 14 डिग्री सेल्सियस. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: दिस इज सरिता सबरवाल सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट जी. और प्रोग्राम की इस आव में वेद राही जी की लिखी हुई फिल्मों में या उन्होंने जो डायरेक्ट की या स्क्रीन प्ले लिखे उन फिल्मों के कुछ एक गीत सुन पाएंगे आप.
1: Leica Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
2: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. London's biggest classics all day. Leica Gold.
4: अच्छा, good night.

सोना मना है, कोई नहीं सोएगा अभी। मेरा साथ देना टिल 4 o'clock. Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: प्रोग्राम के सेकेंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आप ही की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मबर जी। इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी आपका साथ निभाऊंगी एंड प्लस वीकेंड पर भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। इस 14 मिनट्स आफ्टर 2 o'clock, वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो फर्स्ट आवर में बड़े प्यारे प्यारे गीत थे आशा जी एंड रफ़ी साहब के गाए हुए। प्रोग्राम के ये दो गाने मैंने चुने थे फिल्म चरस और प्रेम पर्वत से। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि इन फिल्मों के ईदर स्क्रीन प्ले राइटर और राइटर या फिर डायलॉग राइटर या डायरेक्टर उन वो रिलेटेड थे इन फिल्मों के साथ, किस तरह से मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। नाम है इनका वेद राही। आज ही के दिन ये पैदा हुए 1933। इज़ एन इंडियन ऑथर और ज़्यादातर इन्होंने डोगरी लैंग्वेज में लिखा है, स्टोरीज लिखी हों, डायलॉग्स लिखे हों, ज़्यादातर डोगरी लैंग्वेज में लिखे। ही डायरेक्टेड वेल रिसीव्ड मिथोलॉजिकल सीरियल मीराबाई फॉर दूरदर्शन इन 1996 under UTV Productions, and he is also credited for screenplay and dialogues of various Hindi Bollywood films and TV serials, and he directed the film called Veer Savarkar in 2001, biopic on the life of Indian revolutionary Vinayak Damodar Savarkar, unke upar ye bani thi film। और राही साहब यानी वेद राही साहब का जन्म हुआ जम्मू में ऑन 22 मई 1933 में। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं एंड हिज फादर मुल्क राज सराफ स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द स्टेट ऑफ जम्मू, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड टाइटल रणबीर इन 1924। एंड सराफ साहब, मुल्क राज सराफ साहब वॉज प्रजेंटेड विद द सिविल अवार्ड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976। और अब वेद राही जी के बारे में बता दूँ। वेद राही पब्लिश वेरियस शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी लैंग्वेज एंड अलॉन्ग विद नरेंद्र खजूरिया, मदन मोहन शर्मा एंड प्रोफेसर नीलांबर देव शर्मा इज कंसिडर्ड एज नोटेड डोगरी राइटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इनकी किताबें भी हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में। इन्होंने जिन फिल्म्स के साथ ये रिलेटेड रहे, तो पहले तो मैं बता दूँ चरस का जो गीत आपने सुना, तो चरस फिल्म के डायलॉग राइटर रहे थे वेद राही। और दूसरी फिल्म प्रेम पर्वत का गीत आपने सुना, तो प्रेम पर्वत के लिए ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। क्या बात है, तो मुझे उम्मीद है दोनों गीत आपने पसंद किए। और भी गीत आ रहे हैं इन्हीं की फिल्मों के सिलेक्शन से, तो मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, B, your £1 in British sterling can get you today 128 rupees and 35 paisas. Agar aap SBI Yono app ke zariye ya branch mein jaakar paise transfer karate hain by end of June, and be into the to win a £75 voucher every day when you send over £1,000, and also 1 gram gold coin aapko mil sakta hai every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना फाइव कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade, visit heraldpackaging.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leicafly. Fly more, pay less.
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
17: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
18: 25? Seriously?
17: Sounds like Ojo time.
18: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
17: Sorry about the wait. How can I help?
18: You can help me celebrate. I won.
19: Feel the fun. Play Ojo.
20: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
21: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
22: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: कर।
1: भाई एक मुलाकात नहीं, बहुत सी मुलाकातें होंगी। सरिता कल भी आ रही है, परसों भी आ रही है, नेक्स्ट वीक भी आपके साथ ही रहेगी। नेक्स्ट वीक आई विल बी सिटिंग इन अगेन फॉर मिस्टर बाली ब्रह्मभट्ट जी, जो हॉलीडेज मना रहे हैं, और मैं उनकी जगह इस हॉट सीट पे बैठ जाऊंगी।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai like a gold tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भी थोड़ा सा सैड गाना है लेकिन बहुत प्यारा गीत है किशोरदार ने गाया। परीक्षित सानी जो कि अजय सानी के नाम से भी जाने जाते हैं वो और तनुजा थी इस फिल्म में। फिल्म का नाम था पवित्र पापी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स। जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
0: और अब आपको ज़रा जल्दी से मैं याद दिला दूँ आतिफ असलम जी के शो के बारे में। लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम शो। लंदन में हो रहा है ये कॉन्सर्ट, टेकिंग प्लेस ऑन संडे 14th जून एट द O2 लंदन। टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू। एंड रागासन लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स आप ले सकते हैं likearadio.com पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे। राइट भी सरिता के ऊपर ही साउथ हॉल ट्रैवल की बात होगी, पर कोई बात नहीं। साउथ हॉल ट्रैवल वालों की एक मैसेज है, मेक द समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल्स। एक्सप्लोर बीच ब्रेक, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल 02 08 574 8410 for their assistance.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: भी प्रोग्राम में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हो जाए।
2: Like extra podcast updates.
0: राइट, बता दें आपको कि पॉडकास्ट एपिसोड 17 अब आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड है और इसे होस्ट कर रहे हैं दीप राजा जी। एंड इज डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज? As South Asians, do we downplay the situation, mental and health traumas of survivors where accessible support is available? So, ये सब आप अगर जानना चाहते हैं तो फिर दीप राजा जी का साथ दीजिए और आप देखिएगा क्या क्या देखना है आपने, हमारा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 17 और पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर।
3: ये है
4: लाइका गोल्ड।
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajal's Couture, Southall, style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208152025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Ek aitihasik ane divya avsar. પેરિસ માં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ માં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-633. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold. Billion.

0: क्या बात है इन गीतों की। वेल, ये फिल्मी इन फिल्मों के जो मैं गीत सुना रही हूँ, इन फिल्मों के राइटर रहे, डायलॉग राइटर रहे, प्रोड्यूसर रहे, या इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म, स्क्रीन प्ले लिखे, और ये हैं वेद राही जी, जिनका आज बर्थडे है। उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करती हूँ सारे के सारे गीत आपने पसंद किए। वैसे हर गीत के बाद मुझे आपकी तरफ से इशारा मिलता रहा है, थैंक यू एवर सो मच आपके प्यार का। और उनकी किताबें भी हैं, राही साहब पब्लिश्ड वेरियस शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी एंड हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू वेरियस अदर इंडियन लैंग्वेजेस। एंड फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविज़न के लिए भी काम किया है, एंड टेलीविज़न में गुलशन एंड गुलफाम, दूरदर्शन के लिए जिंदगी इन 1987, मीराबाई इन दूरदर्शन एज वेल, एंड अवार्ड्स भी मिले उन्हें, साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर फॉर डोगरी फॉर दिस शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, एंड और भी बहुत से काम किया वेद राही जी ने। उन्हें हम उनके बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you 128.36 Indian rupees, Pakistani rupees 374.34 and Sri Lankan rupee 458.82, Bangladeshi taka 165.20 and Afghanis 84.65.
2: Like
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's 108 pounds and 18 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: This is like a... India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: 3 baje match shuru hone wala Sunrisers Hyderabad and Royal Challengers Bengaluru ke beech.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Om Namah Shivaya.
0: ये गीत मैंने लिया है फिल्म सन्यासी से, 1975 की फिल्म, लता जी एंड मुकेश जी की आवाज़ें। हेमा मालिनी एंड मनोज कुमार पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे वेद राही जी ने।

0: ये गीत मैं पूरा शामिल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबे लंबे गाने और बहुत सारी बातें भी हैं। सो नेक्स्ट आवर में भी किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सुनते रहिए, साथ देते रहिए।
1: गोल्ड आफ्टरनून प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया। दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, बस पेट संभाल जो, क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है।

0: जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गेरंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
1: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
3: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208767-7627
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
5: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: सच में आज तो जलता है बदन क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से, 1998 की फिल्म, इकबाल अफजल साबरी जी के साथ अनुपमा देशपांडे की आवाज़ शामिल थी। और दूसरा गीत आपने सुना रजिया सुल्तान से 1983 की फिल्म, लता जी की आवाज़। दोनों ही गाने ज़बरदस्त थे और उम्मीद करती हूँ आपने दोनों गीत पसंद किए। बहुत से साथी बराबर मेरे साथ हैं फ्रॉम 1 o'clock और बार बार मुझे मैसेजेस लिखकर बता रहे हैं ये गाना भी बहुत अच्छा है, वो गाना भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ एक छोटी सी करेक्शन, जिन्होंने कहा था कि गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, वो गीत फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पे पिक्चराइज हुआ था, तो उनका जवाब गलत था। वेल, असल में वो शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर ही पिक्चराइज हुआ था गाना। अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। जहीर खान साहब कराची में बड़े प्यार से सुन रहे हैं, विमल रायन जी थैंक यू, काशिफ आप भी सुन रहे हैं, सलमा मेडस्टोन कैंट में, इंतशाब थैंक यू, पमी जी इंसलाव, अरुणा दवे कहते हैं मजबूर कर देते हैं आप हमें मैसेज करने के लिए, ऐसा क्या? अरुणा जी आप भी सुन रही हैं, शशि पटेल जी वल्लभ विद्यानगर गुजरात में प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंड भरत गंगा राम जी, मनु जी, अर्जुन जी, ज्योति गिरीशा, हंसा वोरा, साइमन यूसुफ, प्रकाश सोमैया जी, दिनेश पोपट जी, विनय विनोद एंड वरुण, फरीदा गुलाम अली, उल्लास इन टोरंटो, विजय गनोवा जी, विजय गुदरी जी दोनों ही सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंड महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ एरो, एंड विश्वजीत राजू जी, तोची जी, मिसेस शेख, अमरजीत सूरज जी, हाना जी, एंड उमा जी इन पटनी, सहर, हरीश रुडा जी, रानी जी, ओ माय गॉड बहुत लंबी लिस्ट है, तो जिनके नाम नहीं लिए ना आई एम सो सॉरी, क्या करूँ, बहुत कुछ करने को है। हाँ, और अभी अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे आपको चॉइस देनी है दो गानों में से एक गाना चुनने की। आपको मैंने बताया था कि होमी वाडिया उनके उनका भी आज जन्मतिथि है, 22 मई 1911 में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मैं कुछ ही गाने उनकी फिल्मों के ज़रूर शामिल करूंगी, अदरवाइज दिस विल बिकम विंटेज गोल्ड प्रोग्राम, एंड विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आप सुनते हैं हमारे यहाँ से हर वीकेंड को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सैंडी शाह लेकर आते हैं। सो जबक के दो गीतों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, या महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, मुकेश जी एंड लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ गीत, कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है? पर अब ज़रा ये काम भी कर लें,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज आपका 1 British sterling pound क्या दिला सकता है 128 rupees and 35 paisas। और अगर आप SBI योनो ऐप के ज़रिए या ब्रांच में जाकर बिफोर एंड ऑफ जून अगर आप 1,000 pound ट्रांसफ़र करते हैं सेंड ओवर टू इंडिया, देन यू कैन गेट अ वाउचर एवरी डे फॉर 75 pounds। और इसके अलावा ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमेशा अप्लाई करती हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
5: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 02037736333.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: London. Good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: जी हाँ, आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट रहे शम्मी कपूर साहब. उनकी फिल्मों के बहुत से गीत आपने हर प्रोग्राम में सुने हैं. मैंने जो गीत चुना है वो बहुत अरसा हो गया हमारे यहाँ से प्ले भी नहीं हुआ है. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये गीत. मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या. शम्मी कपूर, बी सरोजा देवी, प्राण, ओम प्रकाश जी ने इस फिल्म में काम किया था. रवि जी ने और शकील बदायूनी साहब ने मिलकर काम किया था. शकील साहब के लिखे हुए गीत को कंपोज किया रवि जी ने, रवि साहब की आवाज़.

0: क्या बात है, इन गीतों का जवाब ही नहीं है। कितना प्यारा गीत फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, शम्मी कपूर साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। उम्मीद करती हूँ मेरा चयन आपको पसंद आया, मेरा चुना हुआ गीत आपके दिल को भाया, थैंक यू। और दो गीतों की चॉइस दी थी मैंने आपको, महलों का, महलों ने छीन लिया, बचपन का प्यार मेरा, या फिर तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर। तो ज़्यादातर वोट्स जो हैं वो पहले गीत को, यानी तेरी दुनिया से दूर होके मजबूर, इस गीत को ज़्यादा वोट्स मिले। तस्नीम जी थैंक यू, डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी, अमर जी, मनु जी, इरम जी, शांति जी, किशोर जी, विमल रायन जी, काशिफ साहब, आप सबने इसी गीत को वोट्स दिए, लेकिन कुछ एक वोट्स किसे मिले दूसरे गीत को भी, महलों वाले गीत को, निर्मल एंड किरण जी, वो किसी और रोज़ में गीत ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगी। और अब जो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूं वो है फिल्म जबक का गाना, वही जिसको वोट्स आपने दिए। लेकिन इस गीत को शामिल करने की एक वजह है, वजह ये है कि होमी वाडिया जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे इन बॉलीवुड, उन्हीं की ये फिल्म थी जबक। और जबक कौन से ईयर में आई थी, 1961 में। इस फिल्म का क्या क्या किया था भी इन्होंने बता देते हैं आपको। होमी वाडिया ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और इस फिल्म में काम किया था महिपाल, श्यामा और अचला सचदेव ने। फिल्म का संगीत है चित्रगुप्त जी का। तो आइए पहले गीत सुनते हैं, फिर और भी बातें होंगी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: So, Homi Wadia ji को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम याद कर रहे हैं और कुछ एक गीत उनकी फिल्मों की आप तक पहुंचा रही हूं. इन हिज करियर स्पैनिंग 5 decades, 50 साल तक काम करते रहे. ही डायरेक्टेड ओवर 40 फिल्म्स इंक्लूडिंग हंटर वाली इन 1935, मिस फ्रंटियर मेल इन 36 एंड डायमंड क्वीन इन 1940, श्री राम भक्त हनुमान इन 1948 एंड फैंटेसी फिल्म हातमताई इन 1956. एंड ही वॉज ऑल्सो अ founder member of the Film and Television Producers Guild of India, established in 1954, and he was married to Nadira. I didn't know that stunt woman, fearless Nadira. Nadia ke saath inki shaadi hui thi. And बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, डायरेक्ट की हैं. उनमें से कुछ एक मैंने नाम ली, जबक इज द ओनली वन. मैंने सोचा कि इसका गीत होना चाहिए. और दूसरा अली बाबा एंड 40 चोर, वो भी फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी, तो उस फिल्म का गीत आ रहा है अब आपके लिए. उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे आप.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 128.43, पाकिस्तानी रुपीस 374.15, श्रीलंकन रुपीस 455.1, बांग्लादेशी टका 165.9, अफगानी 84.65.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And it's £107.97 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold. Like a
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और मैच चल रहा है सनराइजर हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एंड सनराइज हैदराबाद ने चूज़ किया कि दे विल बैट फर्स्ट. तो अब इन्होंने कितने रन्स बना लिए बता देती हूँ, 105 रन्स बना लिए और उनके दो खिलाड़ी आउट हुए इन 9.1 ओवर में.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली

0: 8838390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: मैम, हैव यू बॉट सम ऑफ दोस डिलीशियस नूडल्स?
2: यू मीन कोका, द किंग ऑफ नूडल्स। कोका मीन्स डिलीशियस। वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल इन कोका पैकेट, कोका कप एंड कोका बोल नूडल्स, सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस एंड हलाल अप्रूव्ड। द किंग ऑफ नूडल्स कोका नूडल्स पैकेट्स, कप्स एंड बोल्स नाउ अवेलेबल Everywhere in the UK.
3: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
5: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours, Coach, Eurostar या Flight. आप चूज करो अपना स्टाइल, बाकी सब Star Tours Experience संभाल लेता है। Visit startours.co.uk.

0: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They are indeed. Make this summer memorable with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes, and much more. Holiday deals that include flights, hotels, and ATOL protection, which is most important. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel on 0208 574 8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Sandy Shah on Gold Drive.
2: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट Dasham official website.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 23 23 or visit startours.co.uk.
9: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
10: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स
11: जस्ट एड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
10: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स
0: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान Gold Drive with Sandy Shah.
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
13: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: And location.
1: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
1: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
2: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र.
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखना रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रेजो हस्बैंड जी
9: राम कृष्ण हरी UK तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: This is Sandy Shah on Gold Drive.
13: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: स्थल में ह्यूज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स. iTech इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग. फॉर iTech एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Like a Gold.
2: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, you could get up to 128 Indian rupees and 35 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in win to win £75 Sukha voucher har din when you send over £1,000. Saath hi 1 gram gold ka coin bhi every week jeet sakte hain when you're sending £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI UK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Hanji, hello, hello, hello. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया तो आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन फीचर्स के साथ में हाजिर हो जाती हूँ मैं हर शाम. पहले आवर में यादों की बारात, दूसरे आवर में इमोशन ऑफ द डे, इट्स अ फैंटास्टिक फ्राइडे, ओके, एंड थर्ड आवर में गजल या कवाली. आज मैं क्या सुनाऊंगी जरूर बता दीजिएगा. तो हमेशा की तरह मैंने आपसे कहा था कि खाना वाना खा लिया ना, खा भी के अब यू रेडी फॉर डांस मस्ती, क्योंकि आपको तो पता है कि आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी. और म्यूजिक जो है आज फुल वॉल्यूम पे लगाओ, आसपास के लोगों को भी पता चले कि इवनिंग शो विद अश्विनी आपने लगा रखा है. सो असाइनमेंट तैयार सारे के सारे बच्चे, क्या असाइनमेंट है? ओके, सो विथ मी आई एम दैट पर्सन हु लव्स टू प्लान अहेड, ओके, कि आगे क्या करना है, वीक कैसा है, अगर ट्रैवल करना है तो फिर टिकट्स बुक कर लेना है, फिर कहीं जाके रुकना है तो वहाँ के होटल्स चेक करके लेना है, मतलब सारी बुकिंग छुकिंग मुझे करना, मतलब इन एडवांस मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें प्लान करके. ऐसा नहीं कि 11th आवर पे कुछ चीज़ें आएँ तो मैं नहीं करूँगी, बट आई एम दैट पर्सनैलिटी हु लव्स टू प्लान प्रॉपरली और उसके बाद में चलो आगे कोई चीज़ें तब की तब करेंगे, ऐसा वाला मेरा एटीट्यूड नहीं है. आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या आप मेरी कैटेगरी में आते कि जिन्हें प्लान करना पसंद है, या देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, बता देना.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. The wait is now over. The king of melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LEICA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
0: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: Like a cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
12: Yaadon ki baraat.

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए सुना दिया आपको आपका फेवरेट म्यूजिक. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी, जहां आज बिल्कुल आप लोग सब समझ गए. अच्छा हो गया ना डिनर की, मतलब आज डिशेस की कोई फोटो शोटो नहीं आ रही, इसका मतलब ऑल गुड बॉयज़ एंड ऑल गुड गर्ल्स खाना पीना खा के आज रेडी हो गए हैं. आज की प्लेलिस्ट जो है ना, मतलब फुल वॉल्यूम में एक तो आपके घर पे चलनी ही चलनी है, ठीक है. और ऐसा है कि बहुत जो स्ट्रेसफुल काम था, आपको लगा कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे, मतलब घर में झाड़ू पोछा कड़का बर्तन फिर कपड़े जो भी है, वॉल्यूम फुल रखो. ये 3 घंटे में ना वो सारे काम आप घर के कर लोगे जो शायद पिछले 30 दिन से बाकी है या 3 दिन से बाकी है, है ना. ये मेरा बात आप सबसे. ओके, मैंने सबसे सवाल पूछा है कि आर यू समबडी विथ मी इन द सेम कैटेगरी जिन्हें प्लानिंग करना अच्छा लगता है एडवांस में ठीक से, और ना कि अरे देख लेंगे हो जाएगा, है ना. तो आप मैक्सिमम लोग मुझे यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. अच्छा, तो ये प्लानिंग जो है सिर्फ आप और हम ही अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं करते हैं, ये जो चोर भाई साहब है इन्होंने भी प्लानिंग की थी, ठीक है. तो ये बड़ा ही स्ट्रेंज सा इंसिडेंट हुआ नवसारी गुजरात में, जहाँ पे ये चोर भाई साहब घुस गए एक ऑफिस में चोरी करने के लिए. चोरी तो की उन्होंने 64,000 रुपीज़, और इतनी गर्मी चल रही है फिलहाल, अरे ना अप्रैल और मई का महीना, हाँ हाँ जान खा जाता है. तो ये चोर भाई साहब जो है इन्होंने सोचा कि अब कहाँ तो इतनी गर्मी में बाहर निकलूँ, वहीं पर AC लगाया 6-8 घंटे, बड़ी हासी 6 घंटे उन्होंने वहाँ पर नींद ली. ओके, सुबह जब हुई तो बाकी सब लोग आने के पहले वो चले गए. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है CCTV में लोग, मतलब जो ओनर है उन्होंने देखा, पुलिस ने देखा कि ये आदमी कितना रिलैक्स होके यहाँ पे ठंडी हवा में 6 घंटे अच्छे से इसने नींद निकाली, और जैसे ये शायद अलार्म लगाया था पता नहीं क्या जो भी है, सुबह होने से, मतलब सुबह इन व्हाट सेंस कि जब तक ओनर्स आ जाए तब तक, ओनर्स आने तक वो निकल चुके थे. ऐसे वियर्ड से इंसिडेंट्स भी होते हैं, और इन्होंने प्लानिंग की थी क्या उस चीज़ की, कि आपको क्या लगता है ये जो चोर भाई साहब थे इन्होंने प्लानिंग की होगी, या 11th आर पे इन्होंने सोच लिया कि चलो AC है तो यही रुक जाते हैं. मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में गोरिया कहाँ तेरा देश.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स. द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: अच्छा मेरा देश जो है, अब ये भाई साहब और ये दीदी पूछ रहे थे, तो मेरा देश जो है, मैं तो यूके में रहती हूँ है ना, लंदन वासी हैं हम लोग, तो हमारा देश तो वही अभी यूके है। तो मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में कारवां फिल्म से सुनाएं आप सभी को ये गीत। और टिक टिक करती घड़ी क्या कह रही है, एक बार टाइम मिला लेते हैं। इट्स 7:33 एंड सब जो हैं झूम झूम के मुझे हाय हेलो किए जा रहे हैं, अपना अपना आंसर बताए जा रहे हैं। एंड राजीव जी, ये जो है ना, ये मराठी में कहते हैं, हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जब हिंदी में बोलते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसे मत किया कर, तो हम लोग मराठी में बोलते हैं दुष्टपणा नको करूँ, मतलब दुष्टों जैसे ना बिहेव करें। सो अभी हमारे प्यारे राजीव जी ने क्या किया, इन्होंने इनके डिनर टेबल का पिक्चर तो मुझे भेजा है, उसके बाद उसके पहले उन्हें जो पिक्चर भेजा है दैट इज कुकुम्बर, मतलब ककड़ी विथ सम लेमन विथ सम चटकदार चिली जूस, और ऐसे सब भेज के मतलब क्या, क्यों क्यों करोगे आप ऐसा मेरे साथ, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे गाने लेके आई हूँ और आप ऐसे करोगे। यहाँ पे मुंह में सैलाब आ जाता है ना, ये चटकदार बटकदार चीज़ें। अब कल ही तो मैंने सैंडी जी के शो पे कहा था कि मैं मिठोरी हूँ, मैं चटोरी हूँ, तो ये बड़ी गलत बात करी आपने। मस्ती मज़ा इंटरेक्शन के साथ में यहाँ पे आप सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी। वॉल्यूम अप कर लीजिए क्योंकि किशोर कुमार की आवाज में पैसा ये पैसा।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। द शो इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक। तीन अमेजिंग फीचर्स हैं, यादों की बारात में आपको सुनाया था ये मेहरबा, सो सारे मेहरबा हमारे आ रहे हैं आज फ्राइडे जो लेट काम करके आ रहे हैं। आई नो अटेंडेंस रजिस्टर में आगे अपनी हाजिरी लगाने वाले हैं। सेकेंड आवर इट्स फैंटास्टिक फ्राइडे, तो क्या सुनाने वाली हूँ आज ही सुनते रहिए। सेकेंड आवर की तरफ धीरे धीरे आप और हम बढ़ रहे हैं। थर्ड आवर में गजल या कव्वाली, सोच लीजिएगा आज मैं क्या सुनाने वाली। आहा, ओ ये तो कविता बन गई, गजल या कव्वाली आज मैं क्या सुनाने वाली। मुझे ही हंसी आ रही है, इट्स ओके, आई थिंक आप लोग भी वहाँ पे हंस रहे होता है ना। ऐसे राइमिंग वर्ड्स जब आते हैं तो राइमिंग वर्ड्स हम लोग बोलते रहते हैं अपने लाइफ में। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले आवर में। लास्ट ट्रैक आशा भोसले एंड बप्पी लहरी की आवाज़ में नमक हलाल, विच वॉज रिलीज इन 1982, उसमें रात बाकी, वॉल्यूम अप रखना ठीक है। पूरे के पूरे 3 घंटे ना ऐसी प्लेलिस्ट मैंने लगाई है आज कि आप कहेंगे वाह एंड उफ। तो वाह एंड उफ शो रोज ही होता है लेकिन फ्राइडे की मस्ती ज़रा अलग रहती है ना। तो हमेशा की तरह खा पी के तैयार रहिएगा। फ्राइडे है तो मैं साइलेंट गीत नहीं लगाऊंगी, मैं अब भी बोल रही हूँ तैयार हो जाओ मस्ती के लिए।
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
1: But how? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simzy before we left London.
1: Simzy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy E6

0: 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: The Evening Show with Ashwini.
2: Leica Radio Network.
0: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस. विजिट startours.co.uk.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते,

0: सेकेंड आवर में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है. मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 12 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. शोले का म्यूजिक अभी चल रहा है बैकग्राउंड में और शोले का ही गीत आपको सुनाया. इसके पहले हमने आडी बमन की आवाज़ में, उसके पहले उदित नारायण एंड पूर्णिमा की आवाज़ में हीरो नंबर वन, विच वॉज रिलीज इन 1997. शो को धीरे धीरे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. आप लोगों के मैसेजेस का फ्लो जो चल रहा है ना, जबरदस्त तरीके से, मतलब फुल ऑन फ्राइडे मूड में आप लोग भी हैं ये समझ में आ रहा है. मन्ना डे की आवाज़ में अगला गीत जो आपको सुनाने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम भूत बंगला. 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. कौन सा गीत है, चलिए सुनते हैं.
1: ये है Like a Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could get up to 128 Indian rupees 35 paise. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: Like a gold.
1: Your bank holiday weekend starts here on Leica.
4: Suno, aur gaur se suno. Arre pehle taaliyan to bajao. Aaj raat ka main aakhri gaana ga raha hoon aur gaane mein ye kehna chahta hoon. दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like our gold.
3: फैंटास्टिक फ्राइडे की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं. सो इमोशन ऑफ द डे में आपको कौन सा गीत सुनाऊंगी बताऊंगी बस कुछ ही देर में. तो कुछ लोग भाई हमें कॉल करते हैं या ऑडियो मैसेज भेजते हैं, तो सॉरी जी, अपोलॉजीज. आपका कॉल एक तो हम ले नहीं पाते हैं, ऑडियो मैसेजेस हम सुन नहीं पाते. आपका और हमारा कम्युनिकेशन केवल और केवल मैसेजेस से हो सकता है जो हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग करते रहते हैं. ज़रूर मैसेजेस करते रहिए, बताते रहिए शो कैसा लग रहा है आप लोगों के. फ्राइडे तो शुरू हो चुकी है, वीकेंड शुरू हो चुका है. और वीकेंड्स में अच्छा क्या स्पेशल कर रहे हो भाई? कमिंग अभी सैटरडे संडे वेदर भी बड़ा सुहाना होने वाला है ना लंदन में. तो कहीं बाहर पार्क में जाके बैठे हो कि घर में बैठे हो? विथ मी मेरा प्रॉब्लम ही अलग है. बहुत ज़्यादा जब धूप बढ़ जाती है ना, तो मीना है जात कोठे मैं नहीं जाती बाबा कहीं बाहर धूप में ना. अच्छा वो अभी आप गाना मैं डेडिकेट करना मेरे लिए कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए नैनी. एक तो मैं गोरी हूँ नहीं और दूसरा धूप से मुझे बहुत डर लगता है. प्यार से थप्पड़ से किसी चीज़ से और डर नहीं लगता है, लेकिन धूप से मुझे बहुत डर लगता है. अजीब सी एक थकावट होती है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाते हैं ना. एंड आई बिलीव अब तो हमारे यहाँ पे यूके में हर एक घर में पंखा फैन आ चुका है, वो तो बहुत साल हो गए उसे. अभी एसी लगाने का भी टाइम आ गया है. मतलब जब एकदम धुरंधर सी होती है ना गर्मी यहाँ पे, तो आप और हम सब हिल जाते हैं. लेकिन आप कितने भी हिले हो, आपके मनोरंजन के लिए आपका लाइका मीडिया कितनी सारी चीज़ें लेके आता है, राइट? द इवनिंग शो विद अश्विनी में अब फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए ये है अगला गीत पड़ोसन फिल्म से.
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो. इमोशन ऑफ द डे. इमोशन ऑफ

0: गारे गारे
1: जरा बड़े दे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमक बटवा
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
2: ये कचतुर नार अम चोड़े
3: कचतुर नार अम पकड़ कर रखेगा जे।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

इमोशन ऑफ द डे। ये है लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: Extra podcast update.
1: Episode number 17 is out. Domestic violence, which was hosted by Deep Raja, is domestic violence only physical abuse, mental and health trauma of survivors, where accessible support is available. All these topics are covered in this podcast, like Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like Extra is here. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Our Radio.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly, thanks to Jamin Foods.
9: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
8: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights. This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.6 Indian rupee, 374.32 Pakistani rupee, 456.86 Sri Lankan rupee, 165.22 Bangladeshi taka, 84.32 Afghani.
10: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.98 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: एक बार जरा टाइम मैच कर लेते हैं, देखते हैं कितने बजे हैं घड़ी में. मुझे से गब्बर जैसा क्यों फीलिंग कि मैंने कितने आदमी थे. वैसे मैंने बोल दी का कितने बजे हैं. इट्स 45 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. फैंटास्टिक फ्राइडे, उसकी फीलिंग तो अभी भी चल रही है. अभी भी चल रही मतलब अभी और एक घंटे का शो बाकी है. अभी इस आवर के 15 मिनट्स और बाकी है. तो दो बड़े ही फैंटास्टिक ट्रैक, एक तो पुकार फिल्म से, पता नहीं क्यों ये थोड़ा मस्ती भरा ही है ज़्यादा, पर मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, आर डी बर्मन की आवाज़ में समंदर में ना आके, एंड सेकेंड वन उसके बाद में जो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में मिस्टर नटवरलाल से परदेसिया, मतलब दोनों भी गाने ऐसे हैं कि जिसमें आप वॉल्यूम अप कर सकते हो, एंड एज आई सेड कि आपकी एनर्जी जो है वो वापस लौट आएगी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो ये दोनों गीत जो है बिल्कुल समा बांध देंगी, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी और हंसते खाते गाते मुस्कुराते नाचते हुए आप अपने बाकी के बच्चे अगर कुछ काम है तो कर लीजिए, वरना आराम से बैठ के अब शो एंजॉय कीजिए। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत डांस मस्ती की है शुरुआत से, जब से आप आए हैं तब से हमने बहुत सारी वेरिएशन आपके लिए प्ले की है, ऐसी वेरिएशन अभी भी बाकी है, एंड मंडे शाम आऊंगी ना तब भी यही होने वाला है।
0: सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
6: The Evening Show with Ashwini.

0: Like our gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपीस 35 पैसे. सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स. ऑल्सो 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन यू आर सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: थर्ड आवर में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है. बड़े ही फैंटास्टिक दो गीत आपको हमने सुनाए, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह एंड आशा भोसले की आवाज़ में. सुहाग फिल्म से था सेकंड नंबर का गीत. पहले नंबर का गीत अलका याग्निक, कुमार सानू, तू चोर में सिपाही, हम दो प्रेमी. अरे क्या फास्ट ट्रैक था. अरे अरे नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं आशा भोसले SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में. सागर फिल्म से सुना रही हूँ ये गीत. एंड छोटी छोटी खबरें जो बड़ी प्यारी होती हैं, जिन्हें सुन के हमें अच्छा लगता है, वो खबर सुनाएंगी बस कुछ ही देर में.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: एक बार घड़ी मिला देते हैं, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 35 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका हमारा साथ। तो आज इस वीक का ये आखिरी शो, मंडे बैंक हॉलीडे है, आए हाय फिर धूमधड़का करेंगे बहुत। ओके, सैटरडे संडे अपना ख्याल रखिएगा। नाना अभी बाय नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जरूर बता दूँ कि हमारी गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2 जरूर सुनते चलिएगा। आपके मनोरंजन के लिए लाइका मीडिया ढेर सारे गाने लेके आया है। ओके, अभी फटाफट हम चलते हैं आगे। आपको जरा दे दूँ मैं करेंसी रेट्स।
3: Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल। Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे।
3: This is Ashwini, in for Anisa Nazir on the evening show.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
9: Dil diya galla karange na.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर travel mantra.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: £1 you'll get 128.55 Indian rupee, 374.24 Pakistani rupee, 458.04 Sri Lankan rupee, 165.19 Bangladeshi taka, 84.35 Afghani.
8: Leica Radio.
16: 5.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
17: Like a gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £107.97 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: मिला लेते हैं घड़ियां. इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 आप लोग सुनते हैं हर रोज वीकडेज में. वीकेंड है मतलब मेरी तो छुट्टी है ना. हम लोग स्कूल में जब 2 दिन की छुट्टी होती थी, वी यूज़ टू से, वी क्या मतलब मेरी मम्मी, शी यूज़ टू से दिस टू हर फ्रेंड्स, 2 दिन की छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, कुट्टी इज़ कट्टी, लाइक हम लोग नहीं मिलने वाले तो बात नहीं हो सकती, इसलिए कट्टी. ठीक है, सो 2 दिन की छुट्टी आपकी और मेरी कट्टी, कट्टी तो नहीं हो सकती, इतना प्यार भरा हमारा जो रिश्ता है. सो सैटरडे संडे अपना खूब ख्याल रखिए. बाहर घूमने जाना चाहते इतनी धूप में जाइए, अगर आपको विटामिन डी चाहिए बिल्कुल जाइए, अपने आप का खूब ख्याल रखिए. मंडे इवनिंग साथ देने के लिए हो जाइए तैयार अपनी दोस्त अश्विनी का यहाँ पे, क्योंकि मोटिवेशनल मंडे के साथ में और भी मस्ती भरे गीत होंगे, क्योंकि बैंक हॉलीडे है यार, फैमिली के साथ में टाइम बिता रहे हैं. मतलब ऑलरेडी छुट्टी तो शुरू होगी ना, 3 दिन की छुट्टी होने वाली है सबकी. मुझे छुट्टी नहीं है, मैं आने वाली हूँ एंड आई लव कमिंग हियर. आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मस्ती करना, गानों के साथ में नाचना, फुल ऑन धमाल चलती है यहाँ पे. हाँ जी, हमेशा की तरह ये कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए. प्यार दो, प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, और हम कोई भी अपना पावर यूज़ नहीं करते. आप में से कई लोग सोचोगे कि गज़ल कवाली क्या सुना रही भाई, क्या निकल भी रही है और कुछ पता भी नहीं रही है. गज़ल आ रही है जी, बहुत प्यारी गज़ल है जगजीत सिंह की आवाज़ में. कल 14वीं की रात थी, अमेजिंग, आई लव दिस गज़ल. ठीक है, तो एज यूजुअल आई वुड से प्लीज़ इन्जॉय करते रहिए ज़िंदगी को. लव यू ऑल, टेक केयर. ऑन दैट नोट I would say bye bye.
17: ये है
18: लाइका गोल्ड गजल.